देखि आए डिवोर्स के छोड़कर गए हो तुम माया करने मं भर तो मैं यो गये तर यह समाज में मैं के सोच मैं जानेर डिवोर्स कर मथि को अन्याय सहन न सक मैं डिवोर्स करें